0: श्रोते हो, तुमच्या प्रत्येक मूड साठी परफेक्ट म्युझिक सोबत ऐका धमाल गप्पा आणि भन्नाट किस्से, एक खास शो मूड्स अँड म्युझिक आरजे शुभांगी सोबत दर बुधवारी सकाळी 10:30 आणि पुनःप्रसारण सायंकाळी 6:30. सो डोंट फॉरगेट टू लिसन मूड्स अँड म्युझिक विथ आरजे शुभांगी ओनली ऑन रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, शहनाई की आवाज़ सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? शादी, उत्सव, कोई मांगलिक कार्य? हमारे समाज में संगीत खुशियों का प्रतीक है. जब कोई बड़ा आदमी आता है तो ढोल धमाके बजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक संगीत विदाई का भी होता है? कबीर साहब आज हमें एक ऐसी बारात के बारे में बता रहे हैं जिसमें संगीत तो बज रहा है, लेकिन वह आने की खुशी में नहीं बल्कि जाने की सूचना में है. आज का दोहा उस अंतिम यात्रा और उस अवसर की बात करता है जो एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आता. आइए जानते हैं कबीर किस बारात की ओर इशारा कर रहे हैं. ढोल दमामा दुड़बड़ी, सहनाई संग भेरी, अवसर चलिया बजाई करी, है कोई राखे फेरी.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, ढोल दमामा दुड़बड़ी, सहनाई संग भेरी। ढोल बज रहे हैं, दमामे अर्थात नगाड़े गूंज रहे हैं, शहनाई और भेरी की आवाजें आ रही हैं। यह सब आज बज रहे हैं, लेकिन ये क्यों बज रहे हैं? अवसर चलिया बजाई करी। कबीर कहते हैं कि यह जो जीवन का अवसर अर्थात मौका तुम्हें मिला था, वह अपना बाजा बजाकर अब विदा हो रहा है। जैसे कोई बारात शहर से गुजर जाती हैं और पीछे सिर्फ धूल रह जाती हैं, ठीक वैसे ही समय का यह कारवा गुजर रहा है। है कोई राखे फेरी? कबीर चुनौती देते हुए पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा शूरवीर है, क्या कोई ऐसा बलवान है जो इस बीतते हुए वक्त को रोक ले? क्या कोई इस जाते हुए अवसर को वापस लौटा सकता है? श्रोताओं, इसे ऐसे समझिए कि जैसे स्टेशन से ट्रेन सीटी बजाकर छूट जाती हैं, फिर आप चाहे कितना भी शोर मचा लें, वह वापस नहीं आती। हमारी सांसें भी वैसे ही सीटी बजा रही हैं। कबीर कह रहे हैं कि जब मौत का नगाड़ा बजता है तो बड़े बड़े सुरमा धरे के धरे रह जाते हैं। कोई भी उस वक्त को फेरी यानी दोबारा वापस नहीं ला सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, जरा अपने आसपास के शोर को देखिए। हम सब अपनी अपनी शहनाई बजाने में मस्त हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन कबीर याद दिला रहे हैं कि अवसर तेजी से भाग रहा है। कोशिश कीजिए यह समझने की कि जो सांस अभी आपने ली है, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगी। क्या हम इस अवसर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वह हम प्रेम, करुणा और भक्ति की ढोल बजा रहे हैं, या सिर्फ अहंकार का शोर कर रहे हैं? वक्त के पास रिटर्न टिकट नहीं होता। आज जो भला कर सकते हो कर लो, जिसे गले लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि जब आखिरी भेरी बजेगी तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जागिए इससे पहले कि संगीत थम जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुन भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो रेडियो मन भावन 90.8 FM ध्वनियता है खास फोन इन कार्यक्रम हेलो मन भावन। एक खास संधी तुमचं आवडतं गाणं सांगण्याची आणि तेही थेट रेडिओवर। तुमच्या मनातलं कुठलंही गाणं, काही खास आठवणी, शुभेच्छा किंवा तुमचं मत आमच्याशी शेअर करा। दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284499433। तेव्हा विसरू नका, दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता फोन घ्या, गाणं सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत, फक्त रेडिओ मन भावन 90.8 FM वर। ऑलवेज हार्ट।

सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो ये।

हिंदुस्तान का मेरा दोस्त। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

0: श्रोते हो, तुमच्या प्रत्येक मूड साठी परफेक्ट म्युझिक सोबत ऐका धमाल गप्पा आणि भन्नाट किस्से, एक खास शो मूड्स अँड म्युझिक आरजे शुभांगी सोबत दर बुधवारी सकाळी 10:30 आणि पुनःप्रसारण सायंकाळी 6:30. सो डोंट फॉरगेट टू लिसन मूड्स अँड म्युझिक विथ आरजे शुभांगी ओनली ऑन रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, शहनाई की आवाज़ सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? शादी, उत्सव, कोई मांगलिक कार्य? हमारे समाज में संगीत खुशियों का प्रतीक है. जब कोई बड़ा आदमी आता है तो ढोल धमाके बजते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक संगीत विदाई का भी होता है? कबीर साहब आज हमें एक ऐसी बारात के बारे में बता रहे हैं जिसमें संगीत तो बज रहा है, लेकिन वह आने की खुशी में नहीं बल्कि जाने की सूचना में है. आज का दोहा उस अंतिम यात्रा और उस अवसर की बात करता है जो एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आता. आइए जानते हैं कबीर किस बारात की ओर इशारा कर रहे हैं. ढोल दमामा दुड़बड़ी, सहनाई संग भेरी, अवसर चलिया बजाई करी, है कोई राखे फेरी.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, ढोल दमामा दुडबड़ी, सहनाई संग भेरी। ढोल बज रहे हैं, दमामे अर्थात नगाड़े गूंज रहे हैं, शहनाई और भेरी की आवाजें आ रही हैं। यह सब आज बज रहे हैं, लेकिन ये क्यों बज रहे हैं? अवसर चलिया बजाई करी। कबीर कहते हैं कि यह जो जीवन का अवसर अर्थात मौका तुम्हें मिला था, वह अपना बाजा बजाकर अब विदा हो रहा है। जैसे कोई बारात शहर से गुजर जाती हैं और पीछे सिर्फ धूल रह जाती हैं, ठीक वैसे ही समय का यह कारवा गुजर रहा है। है कोई राखे फेरी? कबीर चुनौती देते हुए पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा शूरवीर है, क्या कोई ऐसा बलवान है जो इस बीतते हुए वक्त को रोक ले? क्या कोई इस जाते हुए अवसर को वापस लौटा सकता है? श्रोताओं, इसे ऐसे समझिए कि जैसे स्टेशन से ट्रेन सीटी बजाकर छूट जाती है, फिर आप चाहे कितना भी शोर मचा लें, वह वापस नहीं आती। हमारी सांसें भी वैसे ही सीटी बजा रही हैं। कबीर कह रहे हैं कि जब मौत का नगाड़ा बजता है तो बड़े बड़े सुरमा धरे के धरे रह जाते हैं। कोई भी उस वक्त को फेरी यानी दोबारा वापस नहीं ला सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, जरा अपने आसपास के शोर को देखिए। हम सब अपनी अपनी शहनाई बजाने में मस्त हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन कबीर याद दिला रहे हैं कि अवसर तेजी से भाग रहा है। कोशिश कीजिए यह समझने की कि जो सांस अभी आपने ली है, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगी। क्या हम इस अवसर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वह हम प्रेम, करुणा और भक्ति की ढोल बजा रहे हैं, या सिर्फ अहंकार का शोर कर रहे हैं? वक्त के पास रिटर्न टिकट नहीं होता। आज जो भला कर सकते हो कर लो, जिसे गले लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि जब आखिरी भेरी बजेगी तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जागिए इससे पहले कि संगीत थम जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुन भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो रेडियो मन भावन 90.8 FM ध्वनियता है खास फोन इन कार्यक्रम हेलो मन भावन। एक खास संधी तुमच आवडत गाणं सांगण्याची आणि तेही थेट रेडिओ वर। तुमच्या मनातलं कुठलंही गाणं, काही खास आठवणी, शुभेच्छा किंवा तुमचं मत आमच्याशी शेअर करा। दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284499433। तेव्हा विसरू नका, दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता फोन घ्या, गाणं सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत, फक्त रेडिओ मन भावन 90.8 FM वर। ऑलवेज।

0: एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज एट टचिंग.
1: हाय मी आरजी स्वरा आपण ट्यून केले रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज हार्ट टचिंग.

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: श्रोते हो तुमच्या प्रत्येक मूड साठी परफेक्ट म्युझिक सोबत ऐका धमाल गप्पा आणि भन्नाट किस्से, एक खास शो मूड्स अँड म्युझिक आरजे शुभांगी सोबत दर बुधवारी सकाळी 10:30 आणि पुनःप्रसारण सायंकाळी 6:30 सो डोंट फॉरगेट टू लिसन मूड्स अँड म्युझिक विथ आरजे शुभांगी ओनली ऑन रेडिओ 1.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, शहनाई की आवाज़ सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? शादी, उत्सव, कोई मांगलिक कार्य. हमारे समाज में संगीत खुशियों का प्रतीक है. जब कोई बड़ा आदमी आता है तो ढोल धमाके बजते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक संगीत विदाई का भी होता है? कबीर साहब आज हमें एक ऐसी बारात के बारे में बता रहे हैं जिसमें संगीत तो बज रहा है लेकिन वह आने की खुशी में नहीं बल्कि जाने की सूचना में है. आज का दोहा उस अंतिम यात्रा और उस अवसर की बात करता है जो एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आता. आइए जानते हैं कबीर किस बारात की ओर इशारा कर रहे हैं. ढोल दमामा दुड़बड़ी सहनाई संग भेरी अवसर चलिया बजाई करी है कोई राखे फेरी.

0: श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, ढोल दमामा दुड़बड़ी सहनाई संग भेरी। ढोल बज रहे हैं, दमामे अर्थात नगाड़े गूंज रहे हैं, शहनाई और भेरी की आवाजें आ रही हैं। यह सब आज बज रहे हैं, लेकिन ये क्यों बज रहे हैं? अवसर चलिया बजाई करी। कबीर कहते हैं कि यह जो जीवन का अवसर अर्थात मौका तुम्हें मिला था, वह अपना बाजा बजाकर अब विदा हो रहा है। जैसे कोई बारात शहर से गुजर जाती हैं और पीछे सिर्फ धूल रह जाती हैं, ठीक वैसे ही समय का यह कारवा गुजर रहा है। है कोई राखे फेरी? कबीर चुनौती देते हुए पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा शूरवीर है, क्या कोई ऐसा बलवान है जो इस बीतते हुए वक्त को रोक ले, क्या कोई इस जाते हुए अवसर को वापस लौटा सकता है? श्रोताओं, इसे ऐसे समझिए कि जैसे स्टेशन से ट्रेन सीटी बजाकर छूट जाती है, फिर आप चाहे कितना भी शोर मचा लें, वह वापस नहीं आती। हमारी सांसें भी वैसे ही सीटी बजा रही हैं। कबीर कह रहे हैं कि जब मौत का नगाड़ा बजता है तो बड़े बड़े सुरमा धरे के धरे रह जाते हैं, कोई भी उस वक्त को फेरी यानी दोबारा वापस नहीं ला सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, जरा अपने आसपास के शोर को देखिए। हम सब अपनी अपनी शहनाई बजाने में मस्त हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन कबीर याद दिला रहे हैं कि अवसर तेजी से भाग रहा है। कोशिश कीजिए यह समझने की कि जो सांस अभी आपने ली है, वह दोबारा लौटकर नहीं आएगी। क्या हम इस अवसर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वह हम प्रेम, करुणा और भक्ति की ढोल बजा रहे हैं, या सिर्फ अहंकार का शोर कर रहे हैं? वक्त के पास रिटर्न टिकट नहीं होता। आज जो भला कर सकते हो कर लो, जिसे गले लगा सकते हो लगा लो, क्योंकि जब आखिरी भेरी बजेगी तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। जागिए इससे पहले कि संगीत थम जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुन भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो रेडियो मन भवन 90.8 FM ध्वनियता है खास फोन इन कार्यक्रम हेलो मन भावन। एक खास संधी तुमचं आवडतं गाणं सांगण्याची आणि तेही थेट रेडिओवर। तुमच्या मनातलं कुठलंही गाणं, काही खास आठवणी, शुभेच्छा किंवा तुमचं मत आमच्याशी शेअर करा। दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता संपर्क क्रमांक 9284499433। तेव्हा विसरू नका, दर मंगळवारी दुपारी 12 वाजता फोन घ्या, गाणं सांगा आणि बनवा हा क्षण खास RJ शुभांगी सोबत, फक्त रेडिओ मन भवन 90.8 FM वर। ऑलवेज

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: हाय मी आरजे स्वरा, आपण ट्यून केले रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: कैसा डरना भरना कैसा जेल तो है ससुराल समझे बाल मुकुंद
1: अरे क्या बकता है पागल कहीं का चक्की पीसो पत्थर तोड़ो काहे की ससुराल यहाँ मैं खाऊं मुर्ग मुसल्लम वहाँ मैं खाऊं दाल
0: भाई जेल से क्यों डरता है तेरे लिए जेल जाना कौन सी नई बात है
1: जुर्म नहीं है मेरा कोई जेल में जाऊं कैसे बोलो बोलो बोलो बोलो

0: ओए चिलगोजे के छिलके, बुल्ला बुल्ला पुलिस वाले को।
1: अरे राम राम राम राम राम, पुलिस को क्यों बुलाते हो भैया? अगर ये तुम्हारे पैसे हैं तो तुम ले जाओ, मुझे तो यही मिले थे।

0: ये सही गिरा के वकील साहब, इसको छेड़ूंगा ना तो जरूर जेल में बंद करवाएगी।
1: चलो।
2: क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं।
1: कहाँ?
2: उस गली में, यहाँ कोई देख लेगा।